0: ये शुगा पी दा नेस ये शुदा
1: आ जे पोम राई ना युदु ना लब जे मा सिपसी नी तो वांग ला गा खवा के मे ना तो दो सी यो मा सी
0: जे ना गा लो यांग जा कि ना काब छु मे ला
1: काब तो काब यो वा छु
2: जांग गु पो गा थोंग जा मा काब छु गो री
1: हाजे बुगु दु ले काब छु गम नी दु गे
2: सु जांग दा काब छु गे उ दो ने जांग काब छु गे उ दु गे
0: ता जीस जीस Pola da mola, amla ga suya le, nian nian zhe ge tun da le, kina ni ngui di ke lu ge su ji, tan de kina ni xie zui gun luo ga qing yin su ji, su luo ge ne le xin ge yao ma ji. Lan pa le ya, ga dian ga ra ya, kang qie pi, ke xin nian qiang zai tun da di gen ge men pi ne, kina ni le zui tin zhe le ge yao ma ji, ga le chu mu su a.
1: Ke chu ma shi, zhan le lian ba ga ri yo ba. Di.
2: Zang meng ga le ji ma su.
0: 姐姐,莫姐姐,这地方,美国我出不去。莫啦,今天给民族了,这地民族,今天你给我下次去查起,美国我出不去,听到地铁了,唱我的全民族。
1: 让个东西马戏,等我。